0: that was allegedly hatched by his 22-year-old fiancée Sia Goyal and her alleged lover Chetan. Now, investigators say that the accused were in constant contact, made multiple visits to the fort and even discussed the alleged murder plan at a cafe before the incident took place. Now, the breakthrough came after the CCTV footage showed suspicious movements and even raised questions by Ketan's family about how, you know, they even prompted police to reopen the probe. Now, probe also reveals that Sia allegedly pushed Ketan off the fort walls during their second visit together. As the reports, she also had a plan C in place to kill him in Mahabaleshwar in case the fort plan fails. Now, important details now stemming in from the case.
1: देखा था इस पूरी घटना को सबसे पहले क्या हुआ?
2: सबसे पहले तो मैं अपना पॉइंट पर था।
1: ठीक है।
2: यहाँ से बहुत दूर है। वो फिर यहाँ का चिल्लाने का आवाज आया। फिर इधर मैं भागकर आया इधर। इधर भागकर आया। फिर लड़की बोली कि यहाँ से गिरा।
1: सिया ने क्या बोला आपको?
2: सिया ने मेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं वो पर्यटक आ गए, फिर मैं उस टाइम इधर आ गया, फिर उनको पूछा क्या हुआ, फिर वो बोली यहाँ से कोई मतलब गिर गया, फिर मैंने सीधा पुलिस को कॉल कर दिया, फिर पुलिस आई, फिर बाद में मैंने कुछ उसको बोला नहीं।
1: पुलिस स्टेशन यहाँ से कितना दूर है, कितना समय लगा पुलिस को आने में?
2: पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगा है, पुलिस की 24 घंटा इधर ड्यूटी लगती है।
1: ठीक है।
2: वो पुलिस चौकी उस साइड में, लेकिन नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है इधर, कभी कभार फोन लगता नहीं जल्दी।
1: नहीं लगता है। तो सिया के हाव भाव कैसे थे जब वो आपके पास आई और बोली की कोई गिर गया है?
2: वो सिर्फ हेल्प कर रही थी, फिर मैं इधर आया, उनको पूछा, ज़्यादा पूछने में वक्त न गवाया नहीं, डायरेक्ट सीधा पुलिस को कॉल किया।
0: Well, NDTV's managing editor Shiv Varur has exclusively spoken to Ketan Agarwal's father. Let's also listen into the conversation.
3: चाल जी, पहले आपके फैमिली ट्रेजेडी को लेकर मुझे बहुत दुख है और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मेरा पहला सवाल विशाल जी, क्योंकि अभी तक कवरेज में बहुत क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स सामने आए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके मुताबिक केतन के साथ लोहागढ़ फोर्ट में क्या हुआ था? क्या हुआ था विशाल जी?
4: जी, वो दोनों ऊपर जा रहे थे और ऊपर वो घूमने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे, और वहाँ जाने के बाद ये सिया नीचे बैठ गई, उसको देख के वो लड़के ने आके उसको धक्का दे दिया और वो ऊपर से नीचे गिर गया खाई में।
3: विशाल जी, कुछ ही दिन उसके पहले सिया ने 14 तारीख को भी धक्का दिया था केतन को, क्या आपको शक हुआ सिया पे उस टाइम?
4: नहीं, उस टाइम शक ऐसा, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ, क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया धक्का देके, लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हग कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो।
3: क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन, आपकी बेटी ने सस्पिशन पहले जताया था, उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप?
4: जी, क्योंकि जब केतन की बॉडी रिकवर हो रही थी, मतलब पुलिस लेके आई ऊपर, जो भी वहाँ से खाई से, तो उस वक्त मेरी लड़की संजना सिया से सवाल कर रही थी, तो सिया ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जनरल सवाल थे कि कैसे हुआ, कैसे गिरे, कहाँ से गिरे, और वो तो एज पे जाता नहीं, इतने एज पे कैसा चला गया, तो उसने एक भी सवाल का जवाब दिया नहीं।
3: ये दोनों परिवार जो हैं विशाल जी, आपने कल बताया था मीडिया पर कि आप एक दूसरे को 40 साल से जानते हैं, क्या कभी आपको कुछ ऐसे शक हुआ कि सिया खुश नहीं है इस अरेंजमेंट से, इस शादी का प्लान से खुश नहीं है, क्या ऐसा कुछ भी सिग्नल था आपको?
4: कभी कभी भी नहीं था। हर दूसरे दिन ये लोग बाहर किसी न किसी डिनर पे चले जाते थे, स्नैक्स खाने के लिए जाते थे। वो फ़ोन कर कर के बात करती थी, संजना से भी करती थी, मेरे मिसेस से भी करती थी। रोज एक दो फोन उसके आते ही थे।
3: और उसने कभी भी कुछ भी सिग्नल, कोई भी शक नहीं था आप में कि उसको नहीं करना था शादी और कोई और है उसके ज़िंदगी में? जो चेतन, जो भी अरेस्ट हुआ है उसके साथ, जो सीसीटीवी में सामने आया है, आपको उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था इसके पहले?
4: कभी नहीं पता चला सर, बिल्कुल पता नहीं था सर।
0: Well, what was first believed to be a tragic accident at a popular Maharashtra fort has now turned into a shocking murder investigation. This involving an alleged love triangle, a failed first attempt, secret meetings and his sister's persistent suspicions. Let's also take you through a special report that breaks down all the details of this very case.
5: On June 18, real estate businessman Ketan Agarwal fell into a gorge at Lohgarh Fort near Pune. The Lonavala Rural Police initially treated the case as an accidental death. But even after Ketan's funeral, his sister was not convinced. 4 days later, Ketan's fiancée, Sia Goyal, visited the family to offer condolences. During that visit, Ketan's sister asked detailed questions about what had happened on the day of the incident. According to investigators, inconsistencies in Sia's version of events raised red flags. The family returned to the police, triggering a fresh investigation. As officers reviewed CCTV footage, technical evidence and phone records, the case took a dramatic turn. Investigators allegedly discovered a relationship between Sia Goyal and Chetan Chaudhary. Police claimed the two had been in regular contact for months. Call records show more than 2,000 phone conversations over 6 months, lasting a combined 238 hours. The investigation also focused on a mysterious figure seen on CCTV at Lohgarh Fort. Despite the scorching summer heat, the man was wearing a monkey cap, hoodie and a mask. Police say the individual was seen communicating with Sia through hand signals, further strengthening their suspicions. Investigators now believe the alleged plot may have been in motion for weeks. Ketan and Sia had visited Lohgarh Fort 3 times on May 31st, June 14th and June 18th. Police claim an earlier attempt to push Ketan into the gorge was made on June 14 but failed. According to the probe, Sia later claimed she had accidentally pushed him after being startled by a snake. Just days before the incident, police say Sia and Chetan met at a cafe and discussed the route and location where the alleged crime would take place. On June 23, police arrested Sia Goyal and Chetan Chaudhary. Both have been sent to police custody. Investigators are now examining whether anyone else was part of the alleged conspiracy. Vidyashpal Sonkamble, NDTV Bureau Report.
0: Well, what appeared to be a picture-perfect romance on Instagram is now at the centre of a sensational murder investigation. Sia Goyal arrested along with her alleged lover Chetan Chaudhary in connection with the Ketan Agarwal murder case had spent months sharing romantic posts about her fiancé, their lavish wedding plans. From captions like "My heart has found its home" to birthday countdowns and even couple videos, the relationship appeared straight out of a fairy tale. But it has all turned out to be a facade. We have a special report on this. Take a look.
6: On social media, it looked like a perfect love story. Romantic posts, flowers, birthday countdowns. But police now allege that behind the picture-perfect Instagram post was a deadly conspiracy. 20-year-old Sia Goyal, now under arrest in the murder case of her fiancé Ketan Agarwal, had spent months documenting their relationship online. After the engagement in February this year, Sia regularly posted photos and videos of the couple. In March, she posted a photo of a candle-lit cake with the message, "Cheers to 1 month since my heart found its home." In May, she shared videos of Ketan gifting her flowers and wrote, "He took Pasand Hai Tumhe very seriously." Friends and followers saw young couple preparing for a lavish rupees 17 crore wedding planned for a Rajasthan palace in November. But investigators now claim the relationship was far from perfect. Police allege that Sia was involved in a secret relationship with Chetan Chaudhary. According to the investigation, the two saw Ketan as an obstacle and allegedly conspired to remove him. On June 18th, Ketan fell 400 feet into a gorge at Lohagarh Fort near Pune during what was supposed to be a birthday trek. Sia initially told police and family members that Ketan had accidentally slipped while posing for pictures. But as the investigation progressed, police claimed the fall was no accident. Perhaps the most chilling detail emerged hours after Ketan's death. Sia posted an emotional birthday message online saying, "Left me on my birthday." Police now believe the post was a part of an attempt to portray the incident as a tragic accident. What followers saw as a fairy tale romance is now at the center of a murder investigation that has shocked Maharashtra. We report NDTV.

0: the emergency. They fought against Indira Gandhi's mindset. And I think that all these parties who particularly suffered during the emergency should be the first ones to echo the thought that, yes, this kind of syllabus should be included. You would remember that all constitutional organizations and bodies were suppressed, whether it was parliament, members of parliament were thrown into jail, whether it was a judiciary, there was committed judiciary that was asked for. Then we had even the media that was suppressed. And every constitutional body was, taken to task by Indira Gandhi. And therefore, this dark chapter needs to be remembered, needs to be studied, and we should never forgive or never forget.
1: So, you know, contrary to what the BJP says, the Congress says that the emergency was necessary to save the country from political chaos. What exactly do you have to say on this?
0: No, I think that anybody who justifies the emergency by saying this kind of thing only shows that they have not learned the lesson in history. I mean, to say that the emergency was necessary, that suspension of fundamental rights was essential, that the application of those laws which did not even allow you judicial review was essential, it only shows that the emergency period must have gone away, but the emergency mindset persists. So anybody who justifies it is doing the biggest disservice, and it shows that they are not committed to the Constitution at all.
1: Right, absolutely, sir. Thank you so much for joining us and sharing your thoughts with us. Well, an important day in history, of course, you know, we're also seeing the NCERT that's going to introduce the class 9th, a chapter in the class 9th textbook on emergency that's going to be talking on this. Now, an important day, of course, we're going to see political activity come in with the BJP and Congress hitting out at one another. Let's now take you through more updates coming in at this hour, and let's take you to Maharashtra. While Pune's cold-blooded murder of Ketan Agarwal has caused shockwaves across the nation. NDTV has accessed shocking probe details in the murder plot that was allegedly hatched by his 22-year-old fiancé, Sia Goyal, and his alleged lover, Chetan. Investigators say that the accused were in constant contact, made multiple visits to the fort, and even discussed the murder plan at a cafe before the incident. The breakthrough came after CCTV footage, suspicious movements, and even questions raised by Ketan's family prompted the police to reopen the probe. The probe also reveals that Sia allegedly pushed Ketan off the fort walls during their second visit together. As per reports, she also had a plan C in place to kill him in Mahabaleshwar in case the fort plan failed.
2: यहाँ से बहुत दूर है वो फिर यहाँ का चिल्लाने का आवाज आया फिर इधर मैं भाग कर आया इधर भाग कर आया फिर बोली कि यहाँ से गिरा
3: सिया ने क्या बोला आपको
2: सिया को सिया ने मेरे को कुछ नहीं बोला लेकिन मैं वो पर्यटक आ गए फिर मैं उस टाइम इधर आ गया फिर उनको पूछा क्या हुआ फिर वो बोली यहाँ से कोई मतलब गिर गया फिर मैंने सीधा पुलिस को कॉल कर दिया फिर पुलिस आई फिर बाद में मैंने कुछ उसको बोला नहीं
3: पुलिस स्टेशन यहाँ से कितना दूर है कितना समय लगा पुलिस को आने में
2: पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगा है पुलिस की 24 घंटा इधर ड्यूटी लगती है
3: ठीक है
2: वो पुलिस चौकी उस साइड में लेकिन नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है इधर कभी कभार फोन लगता नहीं जल्दी
3: नहीं लगता है तो सिया के हाव भाव कैसे थे जब वो आपके पास आई और बोली कि कोई गिर गया है
2: वो सिर्फ हेल्प कर रही थी फिर मैं इधर आया उनको पूछा ज़्यादा पूछने में वक्त न गवाया नहीं डायरेक्ट सीधा पुलिस को कॉल किया
4: देखिए ये परिवार को हम लगभग 30-40 साल से पहचानते हैं उनके दादाजी हमारे दादाजी से पहचान है और सिया की जो बुआ जी है और फूफा जी ये मेरे हमारे कज़न मामा जी लगते हैं तो लगभग 11 फरवरी को ही उन्होंने हमारे साथ बातचीत चलाई लड़की लड़के को दिखाया 12-13 फरवरी को अच्छी तरह बातचीत की लड़के ने लड़की को पहले देखा उन्होंने हाँ किया फिर हमारे लड़के ने लड़की को देखा काफ़ी देर दोनों से बात हुए बाद राजी खुशी बहुत बढ़िया तरह से हुआ 19 तारीख को सगाई का प्रोग्राम हुआ 19 फरवरी को उसके बाद दोनों बहुत अच्छे तरह से थे हमको बिल्कुल कुछ भी नहीं था अच्छी तरह से फैमिली मामा जी कज़न मामा जी और मामी जी थी हमारी इसलिए ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी लड़की के बारे में मामा जी बोले लड़की मेरे आप बिल्कुल कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है टूरिस्ट था।

0: ये न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए भी ठीक है और बच्चे के लिए, बच्चे को साइकोलॉजी में ये अंडा बहुत इंटरेस्टिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो अगर इसका मिड डे मील तैयार करेंगे तो वो तो धार्मिक प्रतिष्ठान है, उसको तो भेज करना पड़ेगा। तो बच्चे लोगों का मेनू नॉनवेज से भेज हो जाएगा और अंडा बाद चला जाएगा। इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट से, हमारा रिक्वेस्ट होगा, ये डिसीजन रिकंसीडर कीजिए।
1: हम लोगों का जो एंसेस्टर लोग यहाँ 5000 साल पहले से रह रहे हैं, तो ये साइंस से जो हम खाते हैं ये हमारा मैंने चला आ रहा है। तो हम लोग नॉन वेजिटेरियन पीपल है, तो मिड डे मील में जहाँ प्रोटीन का सवाल है, अंडा एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन है, मसूर का दाल एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन है, तो ये हटाना ठीक नहीं है। ये इस्कॉन को देने से जो होगा, तो ये सिर्फ वेजिटेरियन फूड दिया जाएगा, तो बंगाल के पैमाने में ये ठीक बात नहीं है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं।
2: Switching tracks from West Bengal now to Karnataka, another political firestorm has erupted in the state. This is after the CAG audit that's flagged several financial irregularities that have taken place in the government of Congress. This is the Congress government's 75,000 crore rupees Lakshmi scheme, the Gruha Lakshmi scheme, and the BJP has slammed the government and have demanded a CBI probe. BJP's R. Ashok has said that Rahul Gandhi's Karnataka model has been exposed. The Congress government strongly is hitting back, denying a scam and asserting that a statewide survey is underway to sanitize that very data. Earlier, Chief Minister D.K. Shivkumar had said that this scheme is the pride of the government of Karnataka and it won't be stopped under any circumstances. With that, we're slipping into a short break. Back with a whole lot more on the other side as to what is happening in Venezuela. There have been back-to-back earthquakes. Between 39 seconds, there have been two earthquakes that have been the strongest in over a century. That and a lot more on the other side.

0: also accessed details as far as his 22-year-old fiance of Ketan Agarwal, who alongside her lover Chetan, and you know, plotted and planned multiple times. In fact, they had a plan C in place if this did not work, when she took him to the same fort for the second time and tried to push him down. This time around, she succeeded along with Chetan to push Ketan down that fort. But had that not worked, they would have had to carry out another plan, which is going to take place in Mahabaleshwar. Mahabaleshwar is a place where it was the family of Ketan that was going to be celebrating her birthday. Her birthday was the very next day, on the 19th of June. They had invited many people. They had booked many rooms in Mahabaleshwar to celebrate the birthday of their to-be daughter-in-law. So the investigation has said that the accused was basically in touch constantly. They had made multiple visits to the fort. They had even discussed the alleged murder plan and the breakthrough that came about after they had accessed CCTV footage. The police had accessed CCTV footage. It's only after the sister of Ketan raised alarms in regard to the kind of responses she got from Sia after the death of her brother. She said she asked questions time and again, but there were no answers. She had no response whatsoever. She didn't get any kind of response from Sia, and that led her to get suspicious as to what really happened. The questions that she really asked was, what happened? What led him to the edge of that cliff? Why was he at the edge of the cliff? What really happened? How did he fall? From which way did he go down? All those questions, to which there were just about no answers. Let's listen in to what the watchman at that fort had to say, and the family members of Ketan Agarwal.
1: आपने देखा था इस पूरी घटना को, सबसे पहले क्या हुआ?
2: सबसे पहले तो मैं अपना पॉइंट पर था,
1: ठीक है,
2: यहाँ से बहुत दूर है वो। फिर यहाँ का चिल्लाने का आवाज आया, फिर इधर मैं भाग कर आया, इधर भाग कर आया। फिर बोली कि यहाँ से गिरा।
1: सिया ने क्या बोला आपको?
2: सिया ने मेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं वो पर्यटक आ गए, फिर मैं उस टाइम इधर आ गया। फिर उनको पूछा क्या हुआ, फिर वो बोली यहाँ से कोई मतलब गिर गया,
1: ठीक है।
2: फिर मैंने सीधा पुलिस को कॉल कर दिया,
1: ठीक है।
2: फिर पुलिस आई, फिर बाद में मैंने कुछ उसको बोला नहीं।
1: पुलिस स्टेशन यहाँ से कितना दूर है, कितना समय लगा पुलिस को आने में?
2: पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगा है, पुलिस की 24 घंटा इधर ड्यूटी लगती है,
1: ठीक है,
2: वो पुलिस चौकी उस साइड में। लेकिन नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है इधर, कभी कभार फोन लगता नहीं जल्दी,
1: नहीं लगता है। तो सिया के हाव भाव कैसे थे जब वो आपके पास आई और बोली कि कोई गिर गया है?
2: वो सिर्फ हेल्प कर रही थी। फिर मैं इधर आया, उनको पूछा, ज्यादा पूछने में वक्त न गवाया नहीं, डायरेक्ट सीधा पुलिस को कॉल किया।
3: परिवार को हम लगभग 30-40 साल से पहचानते हैं, उनके दादाजी हमारे दादाजी से पहचान है, और सिया की जो बुआ जी है और फूफा जी, ये मेरे हमारे कजन मामा जी लगते हैं। तो लगभग 11 फरवरी को ही उन्होंने हमारे साथ बातचीत चलाई, लड़की लड़के को दिखाया 12-13 फरवरी को, अच्छी तरह बातचीत की। लड़के ने लड़की को पहले देखा, उन्होंने हाँ किया, फिर हमारे लड़के ने लड़की को देखा, काफ़ी देर दोनों से बात हुए, बात राजी खुशी बहुत बढ़िया तरह से हुआ। 19 तारीख को सगाई का प्रोग्राम हुआ, 19 फरवरी को। उसके बाद दोनों बहुत अच्छे तरह से थे, हमको बिल्कुल कुछ भी नहीं था, अच्छी तरह से फैमिली, मामा जी, कज़न मामा जी और मामी जी थी हमारी, इसलिए ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी लड़की के बारे में। मामा जी बोले लड़की मेरे, आप बिल्कुल कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तो रिश्ता पक्का हो गया। बाकी फिर आगे चल रहे थे, बच्चे मिलते थे, करते थे, ये करते थे, सब करते थे, कोई किसी में तकलीफ नहीं थी। 19 तारीख को दो तीन बार, बीच में क्या हो गया, दो तीन बार लड़की जिद करने लग गई कि लोहगढ़ जाना।
0: Were there any signs of resistance from Sia's side as far as this alliance is concerned, this matrimonial alliance? Well, let's listen into what the father of Ketan had to say. Were there any signs that he picked up on? Shivarur spoke to him exclusively in this interview. Let's listen in to Ketan Agarwal's father.
4: Chal ji, pehle aapke family tragedy ko lekar mujhe bahut dukh hai, और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मेरा पहला सवाल विशाल जी, क्योंकि अभी तक कवरेज में बहुत क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स सामने आए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके मुताबिक केतन के साथ

0: आपका सीधा पुलिस को कॉल किया?
1: देखिए, ये परिवार को हम लगभग 30-40 साल से पहचानते हैं। उनके दादाजी हमारे दादाजी से पहचान है, और सिया की जो बुआ जी है और फूफा जी, ये मेरे हमारे कज़न मामा जी लगते हैं। तो लगभग 11 फरवरी को ही उन्होंने हमारे साथ बातचीत चलाई, लड़की लड़के को दिखाया 12-13 फरवरी को, अच्छी तरह बातचीत की। लड़के ने लड़की को पहले देखा, उन्होंने हाँ किया, फिर हमारे लड़के ने लड़की को देखा, काफ़ी देर दोनों से बात हुए, बात राजी खुशी बहुत बढ़िया तरह से हुआ। 19 तारीख को सगाई का प्रोग्राम हुआ, 19 फरवरी को। उसके बाद दोनों बहुत अच्छे तरह से थे, हमको बिल्कुल कुछ भी नहीं था, अच्छी तरह से फैमिली, मामा जी, कज़न मामा जी और मामी जी थी हमारी, इसलिए ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी लड़की के बारे में। मामा जी बोले, लड़की मेरे आप बिल्कुल कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तो रिश्ता पक्का हो गया। बाकी फिर आगे चल रहे थे, बच्चे मिलते थे, करते थे, ये करते थे, सब करते थे, कोई किसी में तकलीफ नहीं थी। 19 तारीख को 2-3 बार, बीच में क्या हो गया, 2-3 बार लड़की जिद करने लग गई कि लोहगढ़ जाना।
2: Meanwhile, here's a snippet of the conversation NDTV's managing editor Shiv Arur had exclusively with Ketan Agarwal's grieving father.
3: Chal ji, pehle aapke family tragedy ko lekar mujhe bahut dukh hai aur humse baat karne ke liye dhanyawad. Mera pehla sawal Vishal ji, kyunki abhi tak coverage mein bahut claims, counter claims samne aaye hain, lekin main aapse puchna chahta hu ki aapke mutabik Ketan ke sath लोहागढ़ फोर्ट में क्या हुआ था, क्या हुआ था विशाल जी?
4: जी, वो दोनों ऊपर जा रहे थे और ऊपर वो घूमने के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे, और वहाँ जाने के बाद ये सिया नीचे बैठ गई, उसको देख के वो लड़के ने आके उसको धक्का दे दिया और वो ऊपर से नीचे गिर गया खाई में।
3: विशाल जी, कुछ ही दिन उसके पहले सिया ने 14 तारीख को भी धक्का दिया था केतन को, क्या आपको शक हुआ सिया पे उस टाइम?
4: नहीं, उस टाइम शक कैसा, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया धक्का दे के, लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हग कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो।
3: क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन, आपकी बेटी ने सस्पिशन पहले जताया था, उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप?
4: जी, क्योंकि जब केतन की बॉडी रिकवर हो रही थी, मतलब पुलिस लेके आई ऊपर जो भी वहाँ से खाई से, तो उस वक्त मेरी लड़की संजना सिया से सवाल कर रही थी, तो सिया ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जनरल सवाल थे कि कैसे हुआ, कैसे गिरे, कहाँ से गिरे, और वो तो एज पे जाता नहीं, इतने एज पे कैसा चला गया, तो उसने एक भी सवाल का जवाब दिया नहीं।
3: ये दोनों परिवार जो हैं विशाल जी, आपने कल बताया था मीडिया पर कि आप एक दूसरे को 40 साल से जानते हैं, क्या कभी आपको कुछ ऐसे शक हुआ कि सिया खुश नहीं है इस अरेंजमेंट से, इस शादी का प्लान से खुश नहीं है, क्या ऐसा कुछ भी सिग्नल था आपको?
4: कभी भी नहीं था। हर दूसरे दिन ये लोग बाहर किसी न किसी डिनर पे चले जाते थे, स्नैक्स खाने के लिए जाते थे, वो फ़ोन कर कर के बात करती थी, संजना से भी करती थी, मेरे मिसेस से भी करती थी, रोज़ एक दो फ़ोन उसके आते ही थे।
3: और उसने कभी भी कुछ भी सिग्नल, कोई भी शक नहीं था आप में कि उसको नहीं करना था शादी और कोई और है उसके ज़िंदगी में, जो चेतन जो भी अरेस्ट हुआ है उसके साथ, जो सीसीटीवी में सामने आया है, आपको उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था इसके पहले?
4: कभी नहीं पता चला सर।

0: relationship, remaining in constant touch through thousands of calls over the next 6 months. The probe has uncovered details that suggest the murder was not an impulsive act, but the culmination of months of planning. Police allege the accused met at a cafe to finalize the plot, used coded hand gestures to communicate on the day of the crime, and had even made an earlier attempt to eliminate Ketan that failed. Investigators also claim efforts were made to manipulate travel plans and create cover stories to conceal the alleged conspiracy. As the investigation progresses, each new revelation is adding another layer to what police describe as a cold-blooded and calculated murder plot. We have some news coming in. This has to do with UBT Shiv Sena. Well, the crisis is deepening because 6 UBT MLAs skipped the alliance coordination meeting. 3 of these UBT MLAs also skipped the party's internal meeting held on the 22nd of June. The MVA meeting witnessed surprisingly low attendance is what we're hearing. 23 of the 60 MVA MLAs were absent from the meeting, and 23 out of the 60 MVA MLAs skipped the opposition coordination meeting. The NCP SP Chief Sharad Pawar and Jayant Patil also skipped the key MVA meeting, citing personal reasons. Uddhav Thackeray has questioned the MVA unity, asking if the alliance is truly united. So there are churns within the Shiv Sena UBT, and now questions also being raised over how reunited really is the MVA with so many MLAs being absent. But now we're going to cut across to a live press conference being held by Ravi Shankar Prasad.
1: Recall kar raha hun aapke madhyam se jo desh mein jana chahiye. Indira Gandhi ka election Rae Bareli se set aside ho gaya Allahabad High Court ke dwara. इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट आई उसके खिलाफ, उनको स्टे नहीं मिला. यही कहा गया, आप सदन में आ सकती हैं लेकिन बोलेंगी नहीं. अब आप समझ सकते हैं कि बड़ा फेमस जस्टिस कृष्णा अय्यर का ऑब्जर्वेशन था. ये जब वाकया हुआ तब इंदिरा गांधी को बचाने की कोशिश हुई, और उसी बचाने की कोशिश में इमरजेंसी का दुरुपयोग किया गया. तो पहली बात यह ध्यान रखिए कि विपक्ष का विरोध, देश को तोड़ने की बात, यह सब बिल्कुल बेबुनियाद है. इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ लगाई गई इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए. पूरे विपक्ष के लोग गिरफ्तार कर लिए गए, मैं उसकी चर्चा करूंगा. लेकिन आज मैं 50 साल पूरे हो रहे हैं तो मैं आप लोगों को और आपके माध्यम से देश को बताना चाहूंगा कि सारे संवैधानिक जो संस्थान हैं उसको किस तरह से एब्यूज किया गया. टुडे इज द टाइम टू रिकॉल एज टू हाउ व्हाइल इंपोजिंग इमरजेंसी ऑल द साइन पोस्ट ऑफ डेमोक्रेसी द इंस्टीट्यूशंस we are brutalized by the then Congress government headed by Indira Gandhi. आपको मालूम है कि इमरजेंसी लगाने का जो प्रस्ताव था उस पर कैबिनेट की सहमति नहीं थी. रात के अंधेरे में फखरुद्दीन रही अहमद तत्काल राष्ट्रपति से दबाव देकर साइन कराया गया, और सुबह 6 बजे पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई. उसके बाद सभी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, आरएसएस पर बैन लगा, क्या जेपी, क्या मुरारजी भाई, क्या अटल जी, क्या अडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस तो संघर्ष कर रहे थे, मधु दंडवते, ये सभी गिरफ्तार हुए. मित्रों, जेल में जो तांडव हुआ है उसकी कहानी बहुत आई है. मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं. जेपी को गिरफ्तार करके रखा गया था हरियाणा में एक गेस्ट हाउस में. तो जेपी सुबह में जलपान कर रहे थे तो देखे सामने मुरारजी भाई टहल रहे हैं, उनको ऊपर रखा गया था. तो जेपी ने कहा मुझे उनसे मिलने दो. कहा आप नहीं मिल सकते. कहा ऐसा करो हम लोग को साथ नाश्ता करें दो. कहा आप नहीं कर सकते. ऐसा करो हम दोनों जलपान करेंगे तो हम लोग के बीच में बैठ जाना. कहा नो. आप समझ सकते हैं

एपी मीसा में बंद हैं, सामने मुरारजी भाई हैं, आप मिल नहीं सकते हैं। अटल जी, अडवाणी जी बेंगलोर जेल में गिरफ्तार हुए। मित्रों, जिस तरह से जेल में अत्याचार किया गया उस पर कई पत्रकारों ने किताबें लिखी हैं। विशेष रूप से मैं कूमी कपूर की किताब का उल्लेख करना चाहूंगा, जो दिल्ली में खुराफात हुई और उस समय दिल्ली में एक एसडीएम होते थे नवीन चावला, जिनको पुरस्कार में बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। उनको निर्देश था कि सबों को टिन के शेड वाले सेल में रखो ताकि गर्मी से परेशान हो और टूटे। यही देशभर में चला। बिहार में थोड़ी हालत बेटर थी क्योंकि हम लोग पहले से संघर्ष कर रहे थे, तो थोड़ा उन्होंने देखा था, हम लोग की बहुत पिटाई हुई थी। मित्रों, मानवता को शर्मसार करने वाली इतनी घटनाएं हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए, ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। नसबंदी दिल्ली में जो हुई, आप सभी पत्रकार पढ़े होंगे, तेरे को पेंशन चाहिए, नसबंदी का कैंडिडेट ला, तेरे को प्रमोशन चाहिए, नसबंदी का कैंडिडेट ला। पूरे देश में अब आप समझ सकते हैं कि जिसकी शादी भी नहीं हुई है उसको भी जबरदस्ती नसबंदी, क्योंकि सीएम को भी था कि जितना नसबंदी का सर्टिफिकेट दोगे संजय गांधी की नजरों में उतना ऊपर जाओगे। तो ये मैंने आपको बताया ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ क्या हमला। अब मैं आता हूं प्रेस के खिलाफ। दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर मार्ग है ना, यहां पर सभी अखबारों के कारण है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, बाकी है, इन सबों की बिजली काट दी गई थी 24 के रात में ताकि अखबार नहीं निकले। और ये हाल था, लोग पूछ रहे हैं का कुछ नहीं छपेगा, कई अखबारों ने अपना ब्लैंक संपादकीय लिखा। आपको मालूम है कुलदीप नायर की गिरफ्तारी हो गई थी मीसा में, बड़े संपादक थे, बंद कर दिए गए, जेपी के पक्ष में लिखते थे। बाकी कई बड़े पत्रकार, मैं क्या नाम लूं, एस निहाल सिंह हो या बाकी हो, इन सबों ने कहा वी विल नॉट राइट आवर एडिटोरियल्स। इतना अत्याचार किया गया और आज जो लोग मीडिया पर हमला करने की बात करते हैं, बिका हुआ मीडिया है। उसमें इमरजेंसी में देखें, उनका एक चीफ सेंसर ऑफिसर था, बिना उसके अप्रूवल के कोई समाचार नहीं छपेगा। और संजय गांधी की देशभर में यात्रा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा, ये बात शाह कमीशन की रिपोर्ट में सवाई है। और बाकी तारीफ करने वाले तो लोग थे ही। अडवाणी जी ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहा था, सम जर्नलिस्ट व्हेन दे वर कॉल्ड टू बेंड दे प्रेफर टू क्रॉल। कुछ जर्नलिस्ट से जो झुकने को कहा गया तो वो दंडवत करने को तैयार थे, ये सच्चाई है। बहुत से वेल नोन नेम है, नाम क्या ले मैं लूंगा, आपको मालूम है, कुछ न्यूज़पेपर्स थे उसमें भी कई लोगों ने हिम्मत दिखाई। मुझे याद है कि छात्र संघर्ष नाम का एक हम लोग अंडरग्राउंड पेपर निकालते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का मुझे सौभाग्य मिला था, अंडरग्राउंड में काफी एक्टिव था। आपको मालूम है जेपी की किडनी खराब हो गई थी, वो मुंबई के जसलोक अस्पताल में थे 26वें फ्लोर पर, तो कहा गया इनको थोड़ा धूप चाहिए, मना कर दिया गया, धूप में बैठेंगे तो नीचे मुंबई की जनता देखेगी तो उनको वेव करेगी। बाद में आज वो मर गए, सोली सोराब जी, मैं उनका अभिनंदन करूंगा, उनका आई एम गोइंग टू मूव द बॉम्बे हाई कोर्ट। तब उनको एक घंटा बैठने की अनुमति दी गई, उनकी किडनी खराब हो गई थी। जब वो मरने वाले थे तो उनको छोड़ा गया। हम अंडरग्राउंड रेसिस्टेंस को देख रहे थे, आज कई चीजें बड़ी भावुकता से याद आ रही हैं। तो पटना से जो परिचित थे उनको याद होगा, पटना में दरभंगा हाउस में हम लोग का एमए का क्लास चलता था। हम लोग तो सब लोग भागे हुए थे, क्या क्लास वास करना, गिरफ्तारी सब, पढ़ाई लिखाई सब तो अपनी जगह थी। तो हमने कहा जेपी को, वहां एक बहुत फेमस काली का मंदिर है, तो जेपी को दर्शन के लिए बुलाएंगे, क्योंकि कांग्रेसियों ने कहा था जेपी पागल हो गए। तो जेपी आए,
देख करके पूरी स्टूडेंट दौड़ पड़े तो उन्हें पुजारी को गिरफ्तार कर लिया जिसने उनको माला पहनाया था, और बाद में जो किया सो किया ही आपको मालूम है। तो क्या नसबंदी, क्या नेताओं के साथ अत्याचार, क्या संघ के स्वयंसेवकों के साथ अत्याचार, क्या मीडिया के साथ अत्याचार। पांचजन्य, मदरलैंड, ऑर्गेनाइजर, इंडियन एक्सप्रेस, मैं नाम ले रहा हूं, दे शोड ग्रेट फाइट ऑफ रेसिस्टेंस। अब थोड़ा मैं पॉलिटिकल बातें करना चाहता हूं। आजकल इनके पुत्र लोग जो हैं तो उनको स्मरण दिलाना जरूरी है। लालू जी भी जेल में थे, मुलायम सिंह यादव भी जेल में थे अखिलेश बाबू, हाँ, और डीएमके के मित्रों आपको बताना जरूरी है कि आपकी करुणानिधि की सरकार को इंदिरा ने डिसमिस कर दिया था, हाँ। तो देख रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में आया मीडिया, ह्यूमन डिग्निटी। अब मैं आता हूं पार्लियामेंट पर। पार्लियामेंट की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, और जब अपोजिशन के लोग जेल में थे तब संविधान का 42वां संशोधन पारित किया गया। और संजय बाबू की जो सेकुलरिज्म की बात होती है ना, उसी समय लाया गया था, और सोशलिज्म प्रीएम्बल में। तो सेकुलरिज्म की बात करने वालों को मालूम है ना चाहिए कि विपक्षी जब जेल में थे तो ये सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, पीएम के खिलाफ कोई केस नहीं होगा, और रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदल दिया गया ताकि पीएम के इलेक्शन को चाहिए नहीं हो सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब चूंकि ये अमेंडमेंट है तो वी कैनॉट इंटरफेयर। तो संसद के साथ जो बदसलूकी की गई, 5 साल का 6 साल, विपक्ष जेल में, मनमानी तरीके से कानून बन रहा है और संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। व्हाट आई एम सेइंग, ऑल द शेड्स ऑफ डेमोक्रेसी वेयर मर्डर्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी। सारे संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की गई उस समय। जरा मैं जुडिशरी पर बोलना चाहता हूं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने हिम्मत दिखाई कि नहीं, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो हम इंटरफेयर करेंगे। हम लोग को तो इमरजेंसी के पहले ही बंद किया गया था। मैं एडवाइजरी बोर्ड में कमर में रस्सा लगा के गया था पटना हाई कोर्ट में, जज साहब से कहा मैं बहस करूंगा, तो मैं तैयारी करके गया था। और उसकी एक बहुत रोचक कहानी है कि जजेस ने देखा मेरे पिताजी का नाम, तो उनको फोन किया कि आपका बेटा आया था, अच्छा बहस किया था। तो कहा आप छोड़ रहे हैं कि नहीं, काम को पूरी कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट डे मुझे 2 साल के लिए कंफर्म कर दिया एडवाइजरी बोर्ड में, बाद में रिट में हम लोग छूटे। इन फैसलों के खिलाफ भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला ये केस है। और जब बहस हो रही थी तो वहां पर जजेस ने उस समय के अटॉर्नी जनरल नीरेंडे से पूछा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल, इफ ए डिटेनी इज किल्ड इनसाइड द प्रिजन, डज ही हैव एनी रिलीफ ड्यूरिंग इमरजेंसी और नॉट। मिस्टर एजी, अगर किसी डिटेनियो को मार दिया गया जेल में तो उसको कोई राहत मिल सकती है? उनका नो मिलॉर्ड, ऑल द एवेन्यूज आर क्लोज्ड। और आज मैं बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस आर्गुमेंट को सही माना कि उम्मीद करते हैं। इट वॉज अ डे ऑफ ग्रेट शेम फॉर द जुडिशरी ऑफ इंडिया व्हेन दे बकल्ड बिफोर द एट्रोशियस गवर्नमेंट इंपोजिंग इमरजेंसी। एक जज ने हिम्मत दिखाई थी, ने डिसेंट दिया कि नहीं, इमरजेंसी में भी मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार का सम्मान होगा, उसका अतिक्रमण होगा तो हम इंटरफेयर करेंगे। उस बहादुर जज का नाम था एचआर खन्ना, और उनको इन्होंने सुपरसीड कर दिया। सिर्फ 40 दिन के लिए वो चीफ जस्टिस बनते, सिर्फ 40 दिन के लिए। लेकिन ये इतनी बेशर्म सरकार थी कि उनको सुपरसीड कर दिया, क्योंकि उन्होंने नागरिक के अधिकारों की बात की थी। मुझे भी याद है

न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन पर एक संपादकीय लिखा था, ब्रेव इंडियंस इफ डेमोक्रेसी रिटर्न्स टू इंडिया प्लीज हैंग द पोर्ट्रेट ऑफ दिस पावरफुल जज इन द सुप्रीम कोर्ट। उसको हमने कई जगह बांटा था फोटोकॉपी, आज उनकी तस्वीर कोर्ट नंबर 2 में लगी हुई है। 3-4 जजेस को सुपरसीड किया गया, ये क्या बात करेंगे जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए। तो इसलिए आज 50 साल हो गए तो पार्टी को ऐसा लगा कि देश को बताना चाहिए कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है। और आपसे मैं ऐसा आग्रह नहीं करता, लेकिन आज विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इस विषय को रखना चाहिए। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और कई बार तो ऐसा हुआ कि पुलिस वाले उनको खोजते आए हैं, वो सामने से चले जा रहे हैं, कहा नरेंद्र मोदी कहां रहते हैं जानते हो, कहा मुझे तो पता नहीं है। ये सारी बातें आज जग जाहिर है। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई। मैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी एक व्यक्ति कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश की स्वतंत्रता को बंधक बना लिया गया। तो ये लोग हमसे संविधान की बात करते हैं, बेशरम लोग हैं, दी शेमलेस पीपल हु आर लीडिंग द कांग्रेस पार्टी शोकेस इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान के हम रक्षक हैं, संविधान के भक्षक थे और आज भी हैं, कांग्रेस पार्टी का माइंडसेट। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। बाद में 77 में इलेक्शन हुआ, जनता ने एक बार अपना दिखाया और जनता जब जागती है तो बहुत कसकर जागती है, जैसा भी बंगाल में जागी है। जब आप अत्याचार करेंगे, एक्सेस करेंगे तो पब्लिक रिएक्ट करती है। और उस समय मुझे अभी भी याद है कि हम लोग बैठे हुए थे राजनगर के दफ्तर में, मालूम हुआ इंदिरा गांधी हार गई, संजय गांधी हार गए, तो हम लोग तो रोने लगे बिल्कुल। और मुझे वो कहानी याद है, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इंदिरा गांधी पीछे चल रही थी, उनके पदाधिकारियों की हिम्मत नहीं थी कि मैडम को बताएं। बाद में जब थोड़े वोट की काउंटिंग बची थी तो एक डरते हुए कि मैडम आप हार गई, तो शी वॉज शॉक्ड। तो हमेशा वही शॉक होता है जो ममता जी को हुआ है, जो कट कर रहते हैं। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते, दिल्ली बहुत आया करते थे बैठक में, हम लोग का नाम हो गया था स्टूडेंट एक्टिविस्ट में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में JNU में बुलाया जाता था बोलने के लिए और बहुत तारीफ की जाती थी। यू यंग बॉयज फ्रॉम बिहार हैव शोन द फ्लिकर ऑफ होप इन द कंट्री, ऐसी कड़ी कड़ी अंग्रेजी बोलते थे कि अपने समझ में नहीं आता था। इंदिरा गांधी टाइट हुए भी गायब हो गए। याद है मुझे एक बार इमरजेंसी में अंडरग्राउंड मीटिंग थी, तो हमने कहा जरा किसी से मिलने चलो जरा सा, तो एक प्रोफेसर साहब बहुत

0: लगा उत्साह से बोलेंगे, उनका शब्द मुझे याद है, आप लोगों ने भी आखिरी कर दिया था तो इंदिरा गांधी को कुछ ना कुछ तो करना था ना। हमने कहा कि सिर्फ 2 साल में इतना बड़ा परिवर्तन। इसका एक दूसरा पक्ष भी है, जब जेपी जनता पार्टी की विजय के बाद एक विक्टोरियस कमांडर के रूप में पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हम लोग भी आए थे उनका स्वागत करने, बड़ा उत्साह का क्षण था। ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी मोटी मोटी माला लेकर खड़े थे उनका स्वागत करने के लिए। तो जहां दिल्ली में कुछ बुद्धिजीवियों ने हिम्मत दिखाई, संघर्ष किया, जेल गए, वहीं समय में बदलकर रंग बदलने वाले बुद्धिजीवियों का भी चेहरा देखा और वो आज भी है। धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ।
1: मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो इससे संदर्भित तो पहले उन प्रश्नों को हम ले लेंगे, फिर आपके अनेक प्रश्नों का जवाब देंगे। पहले आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से संदर्भित, देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी।

0: उस टाइम शक ऐसा, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया धक्का देके, लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हग कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो।
1: क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन आपकी बेटी ने सस्पिशन पहले जताया था? उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप?
0: जी, क्योंकि जब जब केतन की बॉडी रिकवर हो रही थी, मतलब पुलिस लेके आई ऊपर जो भी वहाँ से खाई से, तो उस वक्त मेरी लड़की संजना सिया से सवाल कर रही थी, तो सिया ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जनरल सवाल थे कि कैसे हुआ, कैसे गिरे, कहाँ से गिरे, और वो तो एज पे जाता नहीं, इतने एज पे कैसा चला गया, तो उसने एक भी सवाल का जवाब दिया नहीं।
1: ये दोनों परिवार जो हैं विशाल जी, आपने कल बताया था मीडिया पर कि आप एक दूसरे को 40 साल से जानते हैं, क्या कभी आपको कुछ ऐसे शक हुआ कि सिया खुश नहीं है इस
0: जी
1: अरेंजमेंट से, इस शादी का प्लान से खुश नहीं है? क्या ऐसा कुछ भी सिग्नल था आपको?
0: कभी भी नहीं था। हर दूसरे दिन ये लोग बाहर किसी न किसी डिनर पे चले जाते थे, स्नैक्स खाने के लिए जाते थे। वो फ़ोन कर कर के बात करती थी, संजना से भी करती थी, मेरे मिसेस से भी करती थी। रोज़ एक दो फ़ोन उसके आते ही थे।
1: और उसने कभी भी कुछ भी सिग्नल, कोई भी शक नहीं था आप में कि उसको नहीं करना था शादी और कोई और है उसके ज़िंदगी में? जो चेतन, जो भी अरेस्ट हुआ है उसके साथ, जो सीसीटीवी में सामने आया है, आपको उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था इसके पहले?
0: कभी नहीं पता चला सर, बिल्कुल पता नहीं था सर।
2: What appeared to be a picture-perfect romance on Instagram is now at the center of a sensational murder investigation. Siya Goyal, arrested along with alleged lover Chetan Chaudhary in the Ketan Agarwal murder case, had spent months sharing romantic posts about her fiancé and their lavish wedding plans. Here's a report.
3: On social media, it looked like a perfect love story. Romantic posts, flowers, birthday countdowns. But police now allege that behind the picture-perfect Instagram post was a deadly conspiracy. 20-year-old Siya Goyal, now under arrest in the murder case of her fiancé Ketan Agarwal, had spent months documenting their relationship online. After the engagement in February this year, Siya regularly posted photos and videos of the couple. In March, she posted a photo of a candle-lit cake with the message, "Cheers to 1 month since my heart found its home." In May, she shared videos of Ketan gifting her flowers and wrote, "He took 'Pasand hai tumhe' very seriously." Friends and followers saw young couple preparing for a lavish rupees 17 crore wedding planned for a Rajasthan palace in November. But investigators now claim the relationship was far from perfect. Police allege that Sia was involved in a secret relationship with Chetan Chaudhary. According to the investigation, the two saw Ketan as an obstacle and allegedly conspired to remove him. On June 18th, Ketan fell 400 feet into a gorge at Lohagarh Fort near Pune during what was supposed to be a birthday trek. Sia initially told police and family members that Ketan had accidentally slipped while posing for pictures. But as the investigation progressed, police claimed the fall was no accident. Perhaps the most chilling detail emerged hours after Ketan's death. Sia posted an emotional birthday message online saying, "Left me on my birthday." Police now believe the post was a part of an attempt to portray the incident as a tragic accident. What followers saw as a fairy tale romance is now at the center of a murder investigation that has shocked Maharashtra. Bureau Report, NDTV.
2: Slipping to a short break. When we return, we bring you our top international headline. Venezuela has been rocked by the strongest earthquakes in a century. Not one, but two. More on that in moments from now.

0: जी ये मेरे हमारे कजन मामा जी लगते हैं। तो लगभग 11 फरवरी को ही उन्होंने हमारे साथ बातचीत चलाई, लड़की लड़के को दिखाया 12-13 फरवरी को, अच्छी तरह बातचीत की। लड़के ने लड़की को पहले देखा, उन्होंने हाँ किया, फिर हमारे लड़के ने लड़की को देखा, काफ़ी देर दोनों से बात हुए, बात राजी खुशी बहुत बढ़िया तरह से हुआ। 19 तारीख को सगाई का प्रोग्राम हुआ, 19 फरवरी को। उसके बाद दोनों बहुत अच्छे तरह से थे, हमको बिल्कुल कुछ भी नहीं था, अच्छी तरह से फैमिली, मामा जी, कज़न मामा जी और मामी जी थी हमारी, इसलिए ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी लड़की के बारे में। मामा जी बोले लड़की मेरे, आप बिल्कुल कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तो रिश्ता पक्का हो गया। बाकी फिर आगे चल रहे थे, बच्चे मिलते थे, करते थे, ये करते थे, सब करते थे, कोई किसी में तकलीफ नहीं थी। 19 तारीख को 2-3 बार, बीच में क्या हो गया, 2-3 बार लड़की जिद करने लग गई कि लोहगढ़ जाना।
1: धनश्री सेल्स किसकी दुकान है यहाँ पर? वो चेतन चौधरी के परिवार से कौन कौन है?
2: ये उनके अंकल और इनके पापा, इधर दुकान है, इधर ही।
1: हाँ, और दुकान कब से है यहाँ पे?
2: ये कब से? बहुत टाइम से है इधर,
1: काफी समय।
2: हाँ,
1: और कितने कौन कौन है यहाँ पे, यानी यहाँ पे काम करते?
2: मालूम नहीं, लेकिन इनके घर वाले इधर है, सब इनके अंकल है, पापा है, सब इधर ही है।
1: चेतन चौधरी को आप जानते हैं, कभी देखा है उनको यहाँ पे दुकान?

0: दुकान एक ही बिजनेस में रहे तो पहचान तो रहती है ना।
1: वो लोग कौन सा बिजनेस में
0: है? वही ड्राई फ्रूट में भी है, ड्राई फ्रूट मसाले में।
1: चेतन चौधरी को आप जानते होंगे, उनसे कभी बातचीत हुई होगी?
2: हमारा सिर्फ व्यापार रिलेशन है, बोलते कुछ माल लेके जाता है, बस उसका उतना ही रिलेशन है हमारा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, हम सिर्फ व्यापार से ही मतलब रखते हैं।
1: जहाँ पर उनका दुकान था उसके ठीक बगल में ही जो है इनका भी दुकान है, और इनका कहना है कि चेतन चौधरी से इनके सिर्फ व्यापारिक संबंध थे और इसके अलावा इस प्रकार का कुछ वो कर सकता है, जिसके ठीक बाद इन लोगों में भी कहीं ना कहीं रोष, और इनका कहना है कि परिजन पर भी इसका काफी भारी असर पड़ा है।
3: NNE TV's Shiv Arora also spoke exclusively to Ketan Agarwal's father. Listen in.
4: काल जी, पहले आपके फैमिली ट्रेजेडी को लेकर मुझे बहुत दुख है और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मेरा पहला सवाल विशाल जी, क्योंकि अभी तक कवरेज में बहुत क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स सामने आए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके मुताबिक केतन के साथ लोहागढ़ फोर्ट में क्या हुआ था, क्या हुआ था विशाल जी?
5: जी, वो दोनों ऊपर जा रहे थे और ऊपर वो घूमने के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे, और वहाँ जाने के बाद ये सिया नीचे बैठ गई, उसको देख के वो लड़के ने आके उसको धक्का दे दिया और वो ऊपर से नीचे गिर गया खाई में।
4: विशाल जी, कुछ ही दिन उसके पहले सिया ने 14 तारीख को भी धक्का दिया था केतन को, क्या आपको शक हुआ सिया पे उस टाइम?
5: नहीं, उस टाइम शक ऐसा, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया धक्का देके, लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हक कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो।
4: क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन, आपकी बेटी ने सस्पिशन पहले जताया था, उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप?
5: जी, क्योंकि जब केतन की बॉडी रिकवर हो रही थी, मतलब पुलिस लेके आई ऊपर जो भी वहां से खाई से, तो उस वक्त मेरी लड़की संजना सिया से सवाल कर रही।
3: Now, as the CCTV footage has been made available, this is in the murder case. The CCTV footage has emerged, which actually show Sia and Ketan. In fact, this is a meeting that took place between Sia and Chetan Chaudhary, her boyfriend, before the murder of Ketan. So take a look at that. This is the CCTV footage of that meeting that took place. Remember, since yesterday we've been talking about this, that this is what the police has revealed, these series of events, including a final meeting where they met at a cafe to discuss the plot just before Sia went to the Lohagarh fort with Ketan Agarwal, finally pushing him to his death from the fort. Remember, this is the second time she had attempted to do this and was successful. In fact, on the 18th, on the 14th as well, Sia and Ketan had gone to the fort where she had tried to push him. However, he grabbed a bush and did not fall. And she claimed that she had seen a snake and that had led to her reaction. However, after that, on the 18th, she finally did push him to his death. And there you can see this meeting between Sia Goyal and Chetan Chaudhary, who were involved, it's being said, for at least a year. And Sia did not want to marry Ketan. Of course, many questions over why she couldn't simply have called off the marriage instead of orchestrating this very sinister and cold-blooded murder. Let's go across to Sujata now, who's been tracking all these developments. And Sujata, since yesterday we've been talking about this meeting that took place at the cafe between Sia and Chetan just before the murder was, you know, the murder plot was done, the murder was done. And now we have that CCTV footage as well.
6: Well, certainly, and this new CCTV footage has emerged in which Chetan and Sia can be seen sitting together in a cafe. And this is the cafe where it is being told that they used to meet frequently. This was their spot. And again, one day before they committed the crime, they met.

0: Gandhi did not put an end to democracy. We're getting some reactions.
1: कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा है, दुख की बात है कि शिक्षा और पढ़ाई में आज राजनीति लाई जा रही है, बहुत दुख की बात है।
2: भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन आज ही का दिन रहा है। इस आपातकाल में जो विपक्ष के नेता थे वो तो जेल में बंद हुए ही, आप जैसे लोग भी जो पत्रकार थे उनको भी पूरा बैन कर दिया गया था। पत्रकार भी आपको कुछ लिख नहीं सकते थे, जैसे आजकल आप लोग पूछ रहे हैं ना।
3: Welcome back. Now, news coming in from Maharashtra and some breaking news in the Shiv Sena and BJP have hit out at Sana Malik. In fact, Maharashtra minister has spoken on Sana Malik's comments on polygamy, where she spoke, where the NCP MLA, in fact, spoke about polygamy in India. And he says, I think she should understand one thing. Any law is not made based on any dharam granth. We don't refer to any dharm or any religion. If there's any injustice happening in society, we make these new laws just to make sure that justice is being served. Now, this comes at a time when uniform civil code is being discussed in Maharashtra, and this controversial comment was made by the NCP MLA, Sana Malik, where she spoke about polygamy. Let's listen in.
4: ये भारत देश और उसके कायदे कानून जो है वो संविधान पे चलते हैं, ना कि कुरान पे, और इसलिए संविधान में जो है वो सारे अधिकार सभी के लिए लागू है। मुझे ये कहना है कि मुझे अभिमान भी है देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए नहीं तो हमारी मुस्लिम बहनों के लिए भी ट्रिपल तलाक जैसा एक मजबूत कानून वहाँ पे लाए हैं। बहुत सारी महिलाएं जो जिस प्रकार से उनको छोड़ा जाता था, मुझे याद है मैं जब वुमेन्स कमीशन में थी, वो आदमी कहीं और देश में होता है और वो महिला यहाँ रहती है, उनके बच्चे साथ में रहते हैं और वहाँ से फ़ोन पे तलाक तलाक कह देता है, और तलाक कहने के बाद उस महिला के भविष्य का क्या होगा, उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा। आज तक जिन्होंने ये वोट बैंक संभाल के रखी है उन्होंने इनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे मोदी जी ने ये किया है और ट्रिपल तलाक जैसा एक सख्त कानून इस देश में लागू किया है जिसका फ़ायदा हमारी मुस्लिम बहनों को हो रहा है।
3: All right, with that, we'll slip into a short break. On the other side, we'll get you news from the FIFA World Cup.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
1: Now watching NDTV 24/7.
2: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues.
3: With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of BJ.
2: Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
0: When stories have impact.
4: Padmata Joshi, managing editor and primetime anchor.
0: Then news has influence. The buck stops here with Padmata Joshi.
2: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
5: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
6: Well, we begin with this bulletin with some breaking news coming in now. This is regarding the escalating war of words over the NCRT textbook and the chapter on the 1975 that has in fact been added. Now the opposition in the latest, it's slamming the emergency chapter in the class 9 NCRT books. NCP in the latest, it said that it's sad to see politics being brought into academics. And it's not only the NCP that's in fact jumped into the fray. The UBT faction of the Shiv Sena also now underlining that, or rather alleging that from the past 12 years, emergency already imposed in our country, adding that Indira Gandhi did not put an end to democracy. We get you some reactions.
7: कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा है, दुख की बात है कि शिक्षा और पढ़ाई में आज राजनीति लाई जा रही है, बहुत दुख की बात
8: है। भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन आज ही का दिन रहा है। इस आपातकाल में जो विपक्ष के नेता थे वो तो जेल में बंद हुए ही, आप जैसे लोग भी जो पत्रकार थे उनको भी पूरा बैन कर दिया गया था। पत्रकार भी आपको कुछ लिख नहीं सकते थे, जैसे आजकल आप लोग पूछ रहे हैं ना, कुछ नहीं पूछ सकते थे, आप लोगों पर भी पूरा बैन था। ये कांग्रेस ने ये काम किया, और आपको पता है बिहार में ही जयप्रकाश नारायण ने ये पूरे आंदोलन को लीड किया, जेपी मूवमेंट जिसको कहते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी 2 साल के करीब जेल में रही इसी आपातकाल, और आप आज भी कांग्रेस का माइंडसेट वही है, आज तक देश से माफी नहीं मांगा आपातकाल के लिए।
9: 12 साल से देश में इमरजेंसी है, 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने किसी के पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया, इंदिरा गांधी ने जब ये संघ के लोग थे जेल में, अटल जी, अडवाणी जी, जगन्नाथ राव जोशी जी, बाला साहेब देवरे जी, तो जहां जहां जेल में थे वहां उनकी 5-star व्यवस्था की थी इंदिरा गांधी।
6: I'm joined by my colleague Ishwarya for more on this. Ishwarya, first of all, bring us on up to speed on what's the latest coming in from the opposition and what's the very central issue here? Why is history being dwindled in these corridors and chambers of politics?
10: Well, for the very first time, it will be emergency chapter that would be

0: Shockwaves across the nation. CCTV video accessed by NDTV shows the murderer accused Sia and her lover Chetan sitting at a cafe in Pune. The video is of a day before the murder. Now, investigators say that it was at this cafe that Sia and Chetan plotted to kill Ketan. Sources say the duo discussed the route that they would take, the exact location of the crime spot, and also the sort of signals that would be made between them. NDTV's also accessed disturbing probe details in the plot that was allegedly hatched by the 22-year-old Sia Goyal and Chetan. Investigators say the accused were in constant contact and had made multiple visits to the fort as well. NDTV's Sujata reports.
1: आपने देखा था इस पूरी घटना को सबसे पहले क्या हुआ?
2: सबसे पहले तो मैं अपना पॉइंट पर था.
1: ठीक है.
2: यहाँ से बहुत दूर है वो. फिर यहाँ का चिल्लाने का आवाज आया, फिर इधर मैं भाग कर आया, इधर भाग कर आया. फिर बोली कि यहाँ से गिरा.
1: सिया ने क्या बोला आपको?
2: सिया को, सिया ने मेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं वो पर्यटक आ गए, फिर मैं उस टाइम इधर आ गया. फिर उनको पूछा क्या हुआ, फिर वो बोली यहाँ से कोई मतलब गिर गया.
1: ठीक है.
2: फिर मैंने सीधा पुलिस को कॉल कर दिया.
1: ठीक है.
2: फिर पुलिस आई, फिर बाद में मैंने कुछ उसको बोला नहीं.
1: पुलिस स्टेशन यहाँ से कितना दूर है, कितना समय लगा पुलिस को आने में?
2: पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगा है, पुलिस की 24 घंटा इधर ड्यूटी लगती है.
1: ठीक है.
2: और पुलिस चौकी उस साइड में, लेकिन नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है इधर, कभी कभार फोन लगता नहीं जल्दी.
1: नहीं लगता है. तो सिया के हाव भाव कैसे थे जब वो आपके पास आई और बोली कि कोई गिर गया है?
2: वो सिर्फ हेल्प कर रही थी. फिर मैं इधर आया, उनको पूछा, ज्यादा पूछने में वक्त न गवाया नहीं, डायरेक्ट सीधा पुलिस को कॉल किया.
3: देखिए, ये परिवार को हम लगभग 30-40 साल से पहचानते हैं. उनके दादाजी हमारे दादाजी से पहचान है, और सिया की जो बुआ जी है और फूफा जी, ये मेरे हमारे कजन मामा जी लगते हैं. तो लगभग 11 फरवरी को ही उन्होंने हमारे साथ बातचीत चलाई, लड़की लड़के को दिखाया 12-13 फरवरी को. अच्छी तरह बातचीत की. लड़के ने लड़की को पहले देखा, उन्होंने हाँ किया, फिर हमारे लड़के ने लड़की को देखा. काफ़ी देर दोनों से बात हुए, बात राजी खुशी बहुत बढ़िया तरह से हुआ. 19 तारीख को सगाई का प्रोग्राम हुआ, 19 फरवरी को. उसके बाद दोनों बहुत अच्छे तरह से थे, हमको बिल्कुल कुछ भी नहीं था. अच्छी तरह से फैमिली, मामा जी, कज़न मामा जी और मामी जी थी हमारी, इसलिए ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी लड़की के बारे में. मामा जी बोले लड़की मेरे बाप, बिल्कुल कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तो रिश्ता पक्का हो गया. बाकी फिर आगे चल रहे थे, बच्चे मिलते थे, करते थे, ये करते थे, सब करते थे, कोई किसी में तकलीफ नहीं थी. 19 तारीख को 2-3 बार, बीच में क्या हो गया, 2-3 बार लड़की जिद करने लग गई कि लोहगढ़ जाना.
1: धनश्री सेल्स किसकी दुकान है यहाँ पर? वो चेतन चौधरी के परिवार से कौन कौन?
4: ये उनके अंकल और इनके पापा, इधर दुकान है, इधर ही.
1: हाँ. और दुकान कब से है यहाँ पे?
4: ये कब से? बहुत टाइम से है इधर,
1: काफी समय.
4: हाँ.
1: और कितने कौन कौन है यहाँ पे, यानी यहाँ पे काम कर?
4: मालूम नहीं, लेकिन इनके घर वाले इधर है, सब इनके अंकल है, पापा है, सब इधर ही है.
1: चेतन चौधरी को आप जानते हैं, कभी देखा है उनको यहाँ पे?
4: देखा है, पर ऐसा हमको कभी लगा नहीं, पर जो गुनाह किया तो किए ही है.
1: आपने उनको देखा है, बातचीत में कैसा है चेतन?
4: बातचीत में ऐसा लगा नहीं कि ऐसा वो कर सकता है, गुनाह किया तो किए ही है, ऐसा कहने का मतलब.
1: और देखिए,
4: हाँ इतना बोल सकते हैं, ऐसा लड़के के घर वालों को मालूम रहता है, ये काम ऐसा करने नहीं देते थे.
1: अच्छा, आप बोल रहे हैं कि अगर लड़के के घर वालों को पता होता तो वो उसको ऐसा काम नहीं करने?
4: हाँ, लड़के के माँ बाप बहुत सीधे.
1: और यहाँ पर सिया गोयल के परिवार का दुकान यहाँ से कितना दूर है?
4: वो पीछे वाली लाइन में.
1: उनसे भी आपकी जान पहचान होगी?
4: जान पहचान मार्केट में एक ही दुकान, एक ही बिजनेस में रहे तो पहचान तो रहती है ना.
1: वो लोग कौन सा बिजनेस में है?
4: वही ड्राईफ्रूट में भी है, ड्राईफ्रूट मसाले में.
1: चेतन चौधरी को आप जानते होंगे, उनसे कभी बातचीत हुई होगी?
5: हमारे से व्यापार रिलेशन है, बोलते हो कुछ माल लेते, माल लेके जाता है, बस उसका ही उतना ही रिलेशन है हमारा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, हम सिर्फ व्यापार से ही मतलब रखते हैं.
1: जहाँ पर उनका दुकान था उसके ठीक बगल में ही जो है इनका भी दुकान है, और इनका कहना है कि चेतन चौधरी से इनके से व्यापारिक संबंध थे, और इसके अलावा इस प्रकार का कुछ वो कर सकता है, जिसके ठीक बाद इन लोगों में भी कहीं ना कहीं रोष है, और इनका कहना है कि परिजन पर भी इसका काफी भारी असर पड़ा है.
0: All right, so that is an idea of the place where Chetan Chaudhary worked. He ran a dry fruits shop. But let's take a look now at this entire case that has been absolutely horrifying. A young man killed in

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Welcome back. You're watching NDTV Newsroom. Now, today marks 51 years since the proclamation of emergency, which remains one of the most controversial chapters in India's history. In fact, the Prime Minister spoke on the emergency as well. The Prime Minister, in fact, paid tribute to those who had opposed the emergency, calling it a dark chapter that undermined the Constitution, democratic institutions, and civil liberties. The emergency saw suspension of fundamental rights, the arrest of opposition leaders, strict press censorship, and sweeping curbs on democratic freedoms. In a related development, the NCERT has, for the first time, included a dedicated chapter on the emergency in its Class 9 social science textbook. The opposition, however, hit out over this, calling it politicization of education, and said that today there is an undeclared emergency in the country.
1: आजादी के उपरांत भारत के जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी इमरजेंसी के नाम पे। संविधान को परिवर्तन किया गया था, एक परिवार की, एक व्यक्ति की सत्ता बचाने के लिए भारत की करोड़ों लोगों की संघर्ष के उपरांत जो हमने प्रजातंत्र अपनाया था उसकी गला घुटने का काम किया गया था। जो संविधान हमने बनाई थी देश को चलाने के लिए उसको बदलने का काम किया गया। ये काला इतिहास देश को भूलना नहीं चाहिए। जब भारत आगे बढ़ रहा है उस मानसिकता आज भी कुछ लोगों में है। जब जब भी उनको कभी कभी अवसर मिलता है ये भारत की व्यवस्था को, भारत की संविधान को, भारत की प्रजातंत्र को तोड़ने की काम करते हैं।
2: इतिहास को अपने तरीके से आप देख सकते हैं, ये उनकी इच्छा है। और ये मैंने देखा है कि जब भी सरकार भाजपा की होती है किसी राज्य में या देश में, तो पहला काम वो क्या करते हैं, किताब, इतिहास, साहित्य को अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वो भाजपा की सरकार का अपना एक ध्येय हो सकता है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि हमें आगे देखना पड़ेगा। और आज जो चुनौती लोकतंत्र को है, आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं मिली। जिस प्रकार दुरुपयोग कर आवाज को दबाया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, निर्वाचन आयोग, कोई संस्था हो, जिस तरह का दुरुपयोग कर अपने हितों को साधने की कोशिश ये सरकार कर रही है, आज से पहले कभी नहीं हुआ।
3: दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दे आर ट्राइंग टू चेंज द करिकुलम एंड सिलेबस फॉर डाइवर्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। Only one thing, NEET and CBSE examination, there is no responsibility. Dharmendra Pradhan completely failure ho chuka. They are trying to divide the people in the name of religion or in the name of distorted history. This is not at all acceptable. This is a clear cut attack on constitution values. We are fighting against that.
4: Ki bada famous Justice Krishna Iyer ka ऑब्जर्वेशन था, ये जब वाकया हुआ तब इंदिरा गांधी को बचाने की कोशिश हुई और उसी बचाने की कोशिश में इमरजेंसी का दुरुपयोग किया गया। तो पहली बात ये ध्यान रखिए कि विपक्ष का विरोध, देश को तोड़ने की बात, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद है। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ लगाई गई इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए।
5: अ लॉट ऑफ ओपिनियंस एग्जिस्ट अक्रॉस द बोर्ड ऑन इमरजेंसी। देयर वर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच द इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। द इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द इमरजेंसी एंड अपहेल्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट इमरजेंसी। In the ADM Jabalpur case, famous case about habeas corpus, it took 25 years. The judgment was given by a bench that included the senior Chief Justice Chandrachud, later became Chief Justice. And 25 years later, it was reversed by a bench that included his son, the junior Justice Chandrachud, who later on again became Chief Justice. So for 25 years, whatever. Indraji had done was upheld by the Supreme Court, and it was only 25 years later that it was changed.
6: Congress ka ye paap

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: I'll begin with this bulletin with some breaking news coming in now. This is regarding the escalating war of words over the NCERT textbook and the chapter on the 1975 that has in fact been added. Now, the opposition in the latest, it's slamming the emergency chapter in the class 9 NCERT books. NCP in the latest, it said that it's sad to see politics being brought into academics. And it's not only the NCP that's in fact jumped into the fray. The UBT faction of the Shiv Sena also now underlining that, or rather alleging that from the past 12 years, emergency already imposed in our country, adding that Indira Gandhi did not put an end to democracy. We get you some reactions.
4: कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा है, दुख की बात है कि शिक्षा और पढ़ाई में आज राजनीति लाई जा रही है, बहुत दुख की बात है।
5: भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन आज ही का दिन रहा है। इस आपातकाल में जो विपक्ष के नेता थे वो तो जेल में बंद हुए ही, आप जैसे लोग भी जो पत्रकार थे उनको भी पूरा बैन कर दिया गया था। पत्रकार भी आपको कुछ लिख नहीं सकते थे, जैसे आजकल आप लोग पूछ रहे हैं ना, कुछ नहीं पूछ सकते थे, आप लोगों पर भी पूरा बैन था। ये कांग्रेस ने ये काम किया, और आपको पता है बिहार में ही जयप्रकाश नारायण ने ये पूरे आंदोलन को लीड किया, ये भी मूवमेंट जिसको कहते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी 2 साल के करीब जेल में रही इसी आपातकाल, और आप आज भी कांग्रेस का माइंडसेट वही है, आज तक देश से माफी नहीं मांगा आपातकाल के लिए।
6: 12 साल से देश में इमरजेंसी है, 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने किसी के पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया, इंदिरा गांधी ने जब ये संघ के लोग थे जेल में, अटल जी, अडवाणी जी, जगन्नाथ राव जोशी जी, बाला साहेब देवरा जी, तो जहां जहां जेल में थे वहां उनकी 5-star व्यवस्था की थी इंदिरा गांधी।
3: I'm joined by my colleague Ishwarya for more on this. Ishwarya, first of all, bring us on up to speed on what's the latest coming in from the opposition and what's the very central issue here? Why is history being dwindled in these corridors and chambers of politics?
7: Well, for the very first time, it will be emergency chapter that would be studied in these schools, in the NCERT books, and it is the history that will be taught as to what happened during the emergency days, what led to take this decision by then Prime Minister Indira Gandhi to have imposed emergency in the country, and certainly what went in the overall 2 years of that particular period.

0: Now, today, the nation reflects on the 21-month period which was marked by suspension of civil liberties, arrest of opposition leaders, press censorship, that's right, and restrictions on democratic rights. Meanwhile, for the first time, NCERT has introduced a dedicated chapter, that's right, a full chapter in entirety on the 1975 emergency in its Class 9 Social Sciences textbook. Titled around the theme of democracy under siege, the chapter highlights how constitutional rights were in fact curtailed, and it presents the emergency as a major challenge to India's democratic framework. We get you more.
1: The NCERT has taken a decision to include a chapter on the emergency.
2: Hello and welcome. You're watching Nationwide at 6 with me, Raisha Sehgal. On the show today, 51 years of Indira Gandhi's emergency, and the chapter has now been included in Class 9. We'll be telling you more about that. Let's start with that very story. Today marks 51 years since the proclamation of the emergency imposed on June 25th, 1975. The 21-month period continues to spark political debate and also various reflection. Prime Minister Modi paid tribute to those who opposed the emergency, calling it a dark chapter that undermined the constitution, democratic institutions and civil liberties as well. In a related development, the NCERT has for the first time included a dedicated chapter on the emergency in its Class 9th social science textbook. The opposition has also hit out, calling it politicization of education. And how there is an undeclared emergency today as well. Take a listen to some reactions coming in on this.
3: आजादी के उपरांत भारत की जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी इमरजेंसी के नाम पे. संविधान को परिवर्तन किया गया था एक परिवार की एक व्यक्ति की सत्ता बचाने के लिए. भारत की करोड़ों लोगों की संघर्ष के उपरांत जो हमने प्रजातंत्र अपनाया था उसकी गला घुटने का काम किया गया था. जो संविधान हमने बनाई थी देश को चलाने के लिए उसको बदलने का काम किया गया. ये काला इतिहास देश को भूलना नहीं चाहिए. जब भारत आगे बढ़ रहा है उस मानसिकता आज भी कुछ लोगों में है. जब जब भी उनको कभी कभी अवसर मिलता है ये भारत की व्यवस्था को, भारत की संविधान को, भारत की प्रजातंत्र को तोड़ने की काम करते हैं.
4: They are trying to divert the history of India. They are trying to change the curriculum and syllabus for diverting the history of the India. Only one thing, NEET and CBSE examination, there is no responsibility. Dharmendra Pradhan completely failure ho chuka. They are trying to divide the people in the name of religion or in the name of distorted history. This is not at all acceptable. This is a clear-cut attack on constitution values. We are fighting against that.
5: कि बड़ा फेमस जस्टिस कृष्णा अय्यर का ऑब्जर्वेशन था. ये जब वाकया हुआ तब इंदिरा गांधी को बचाने की कोशिश हुई और उसी बचाने की कोशिश में इमरजेंसी का दुरुपयोग किया गया. तो पहली बात यह ध्यान रखिए कि विपक्ष का विरोध, देश को तोड़ने की बात, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद है. इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ लगाई गई इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए.
6: इतिहास को अपने तरीके से आप देख सकते हैं, ये उनकी इच्छा है. और ये मैंने देखा है कि जब भी सरकार भाजपा की होती है किसी राज्य में या देश में तो पहला काम वो क्या करते हैं, किताब, इतिहास, साहित्य को अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं. वो भाजपा की सरकार का अपना एक ध्येय हो सकता है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि हमें आगे देखना पड़ेगा. और आज जो चुनौती लोकतंत्र को है, आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं मिली. जिस प्रकार दुरुपयोग कर आवाज़ को दबाया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, निर्वाचन आयोग, कोई संस्था हो, जिस तरह का दुरुपयोग कर अपने हितों को साधने की कोशिश ये सरकार कर रही है, आज से पहले कभी नहीं हुआ.
7: कांग्रेस का ये पाप

0: the Deputy General Secretary of the party, becoming the third Deputy General Secretary of the AIADMK. Others also have not been given back the district secretary positions. And interestingly, the other key rebel face, C.V. Shanmugam, who headed the party's Vilupuram district unit, also has not been given any position. Now, this is being seen as a damage control, but how much will it really make these leaders happy? That's something we'll have to wait and watch. But there was a complaint that these leaders have not been given back the same positions. At that time, sources in the AIADMK argued that this will not be possible at this moment to immediately sack those new leaders who have been appointed as district secretaries. It's in this context this becomes important. Already, five MLAs have resigned. At least three of them have joined the TVK, four of them. And the attempt appears to be to make sure there is no more switching to the TVK in the weeks ahead.
1: Okay. Thank you so much, Sam Daniel, for joining us with those details. AIADMK on firefighting mode there to stop its rebel leaders from leaving the party, joining the TVK. Edappadi Palaniswamy, the general secretary of the party, has tried to retain some of his rebel leaders. In fact, he's reinstating most of them. This is the break that Sam Daniel has just gotten for us. Moving on to other stories. Pune murder, there's been an update in that. C.R. Goyal's parents have spoken out for the first time after the murder surfaced. Sia's father is hospitalized. Sia's father complained of chest pain. First word from Sia's parents now. What we understand is that Sia Goyal's father has been hospitalized after he complained of chest pain.
2: Ketan Agarwal case mein aaj pehli baar Sia ke maa baap yani Praveen ji aur Pooja ji ye ek hospital ke room se hamare saath hain. मैंने अभी भी एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया है, लेकिन एक सवाल मैं वापस या एक सवाल बार बार मेरे तहे दिल में आता है जो मैं चाहता हूं कि दुनिया तक पहुंचे. पुलिस ने जो कहा है वो हम लोगों ने कई बार देखा है, और एक पत्रकार के तौर पे मुझे भी लगता है कि इसमें इस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं वो आरोपों में दम है. आपको क्या लगता है इसमें जो ये आरोप लग रहे हैं आरोपी के साथ या ये जिसने गुनाह किया है उसके साथ क्या होना चाहिए?
3: इसमें जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए.
2: सख्त से सख्त मतलब क्या?
3: सख्त से सख्त फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा.
2: कल अगर ये अदालत में साबित होता है कि सिया ने ये किया है
3: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए. मैं तो बोलूंगा
2: आप होशो हवास में.
3: यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ. जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए.
2: पूजा जी आपको क्या लगता है?
4: मुझे भी यही लगता है, अगर कोई आरोपी हो तो उसे सजा होनी चाहिए.
2: नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूं, अगर आपकी बेटी, क्योंकि आरोपी आपकी बेटी,
4: आरोपी मेरी बेटी हो तो
2: कल अदालत में साबित होता है कि आपकी बेटी ने गुनाह किया
4: है, ठीक है ना, मेरी बेटी ने गुनाह किया है तो मेरी बेटी को फांसी की सजा अभी के अभी दे दो. आप एक माँ बोल रही है ये.
2: केस में आज पहली बार सिया के माँ बाप यानी प्रवीण जी और पूजा जी ये एक हॉस्पिटल के रूम से हमारे साथ हैं. मैंने अभी भी एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया है, लेकिन एक सवाल मैं वापस या एक सवाल बार बार मेरे तहे दिल में आता है जो मैं चाहता हूँ कि दुनिया तक पहुँचे. पुलिस ने जो कहा है वो हम लोगों ने कई बार देखा है, और एक पत्रकार के तौर पर मुझे भी लगता है कि इसमें इस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं वो आरोपों में दम है. आपको क्या लगता है इसमें जो ये आरोप लग रहे हैं आरोपी के साथ या ये जिसने गुनाह किया है उसके साथ क्या होना चाहिए?
3: इसमें जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए.
2: सख्त से सख्त मतलब क्या?
3: सख्त से सख्त फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की
2: सजा. कल अगर ये अदालत में साबित होता है कि सिया ने ये किया है
3: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए. मैं तो बोलूंगा
2: आप होशो हवास में.
3: यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ. जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए.
2: पूजा जी आपको क्या लगता है? आपका क्या कहना है?
4: मुझे भी यही लगता है, अगर कोई आरोपी हो तो उसे सजा होनी चाहिए.
2: नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूं, अगर आपकी बेटी, क्योंकि आरोपी आपकी बेटी,
4: आरोपी मेरी बेटी,
2: हो तो कल अदालत में साबित होता है कि आपकी बेटी ने गुनाह किया,
4: ठीक है ना, मेरी बेटी ने गुनाह किया है तो मेरी बेटी को फांसी की सजा अभी के अभी दे दो. आप

0: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
0: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
7: So many attacks.
6: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
7: It's incredible.
6: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
7: Welcome to Left, Right and Center.
6: Hard facts.
7: War-struck country.
6: Hard questions.
7: In the Ukraine.
6: 30 years of trust.
8: In the Kargil area.
7: North Ukraine.
9: In France. In Italy.
7: At Srinagar.
9: I am Mr.
7: Vishnu Shom for NDTV.
6: Vishnu Shom. Only on NDTV.
10: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
11: When others are warming up, I'm raring to go.

0: The stories that matter, the stories that shape your life.
1: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
0: The show that sets the prime time agenda.
1: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
0: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
3: एनडीटीवी टॉप्स द रॉयटर्स इंस्टीट्यूट इंडिया रीच रैंकिंग्स अगेन नंबर वन इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन न्यूज
4: Yeah.

0: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
0: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: You already know the story I'm talking about because it is dominating the headlines. It's all over social media. But here on NDTV, we are reporting the facts and the proceedings as they unfold as part of an investigation that everyone in India is tuning in to NDTV for. A fiance under arrest, Siya Goyal, and trail of evidences that investigators say point to meticulous planning. All of it was just in the realm of suggestion so far, but now NDTV has this chilling clip of CCTV footage. There are call records, and police claim now that they've got visual evidence of what happened just hours before Pune businessman Ketan Agarwal was fatally pushed to death from the Lohagad Fort. Here's a report on the shocking case and the twists that we've reported today.
1: This is Siya Goyal and Chetan Chaudhary, the main accused in the murder of Pune's Ketan Agarwal. This is them sitting at a cafe a day before Ketan was pushed to death at Lohagad Fort. Investigators say it was here, at this cafe, that Siya and Chetan plotted Ketan's murder. It is here on June 17 that the two allegedly discussed the route they would take to the fort and reportedly zeroed in on the exact spot from where Ketan would be pushed off. As officers review CCTV footage, technical evidence and phone records, the case has taken a dramatic turn. Investigators allegedly discovered a relationship between Siya Goyal and Chetan Chaudhary. The two reportedly met last year at a Diwali party. Police claim the two had been in regular contact for months. Call records show more than 2,000 phone conversations over 6 months, lasting a combined 238 hours. The investigation also focused on a mysterious figure seen on CCTV at Lohagad Fort. Despite the scorching summer heat, the man was wearing a monkey cap, hoodie and mask. Police say the individual was seen communicating with Siya through hand signals, further strengthening their suspicions.
2: तो सिया के हाव भाव कैसे थे जब वो आपके पास आई और बोली कि कोई गिर गया है
3: वो सिर्फ हेल्प कर रही थी फिर मैं इधर आया उनको पूछा ज्यादा पूछने में वक्त न गवाया नहीं डायरेक्ट सीधा पुलिस को कॉल किया
1: केतन एंड सिया हैड विजिटेड लोहगढ़ फोर्ट 3 टाइम्स ऑन मई 31 जून 14 एंड जून 18 पुलिस क्लेम एन अर्लियर अटेम्प्ट टू पुश केतन इनटू द गॉर्ज वाज मेड ऑन जून 14 बट फेल्ड According to the probe, Siya later claimed she had accidentally pushed him after being startled by a snake. On June 23, police arrested Siya Goyal and Chetan Chaudhary. Both have been sent to police custody. With Sujata Dwivedi, NDTV Bureau Report.
0: And we've got some breaking news now. The parents of Siya Goyal have spoken out for the first time, and obviously they've spoken to NDTV. Pune murder accused Siya Goyal's parents have spoken out. They've said, give death by hanging if Siya is found guilty. Here is Siya's father in conversation with NDTV's Sujata Dwivedi. First, an exclusive.
4: Ketan Agarwal case mein, aaj pehli baar, Siya ke maa-baap, yani Praveen ji aur Pooja ji, ye ek hospital ke room se humare saath hain. मैंने अभी भी एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया है लेकिन एक सवाल मैं वापस या एक सवाल बार बार मेरे तहे दिल में आता है जो मैं चाहता हूं कि दुनिया तक पहुंचे पुलिस ने जो कहा है वो हम लोगों ने कई बार देखा है और एक पत्रकार के तौर पे मुझे भी लगता है कि इसमें इस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं वो आरोपों में दम है आपको क्या लगता है इसमें जो जो ये आरोप लग रहे हैं आरोपी के साथ या ये जिसने गुनाह किया है उसके साथ क्या होना चाहिए
5: इसमें जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए
4: सख्त से सख्त मतलब क्या
5: सख्त से सख्त फांसी की सजा कड़ी से कड़ी सजा फांसी की
4: कल, सजा कल अगर, कल अगर ये अदालत में साबित होता है कि सिया ने ये किया है
5: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए मैं तो बोलूंगा
4: आप होशो हवास में
5: ये इसमें पूरे होशो हवास में बोलता हूँ जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो मेरी बेटी क्यों ना हो उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए
4: पूजा जी आपको क्या लगता है
6: मुझे भी यही लगता है अगर कोई आरोपी हो तो उसे सजा होनी चाहिए
4: नहीं मैं सीधी बात कर रहा हूं अगर आपकी बेटी क्योंकि आरोपी आपकी बेटी
6: आरोपी मेरी बेटी,
4: बेटी
6: हो तो मेरी
4: अदालत में साबित होता है कि आपकी बेटी ने गुनाह किया
6: ठीक है ना मेरी बेटी ने गुनाह किया है तो मेरी बेटी को फांसी की सजा अभी के अभी दे दो आप एक मां बोल रही है ये
0: ओके एंड देयर इज मोर ब्रेकिंग

0: of the Passport Act, which says that if the applicant is not a citizen of India, you will not get a passport. Thirdly, passport is given after a very carefully verification by the police. Then only passport is issued. And police verification is based on multiple, government steps are there. Fourthly, where should I get a citizenship certificate? See, my grandfather, his grandfather were born in India. So we don't have this concept of citizenship certificate. Citizenship certificate is given to only those people who acquire citizenship through registration or naturalization.
1: I think it is for the MEA to clarify themselves. They should say that has the government of India issued passports to citizens of foreign countries? As we know, passport, as per the Passport Act, is given to bona fide Indian citizens only. And therefore, it is a proof of Indian citizenship. But if it is not, then they should clarify.
2: अरे अभी नागरिकता का आधार आपको बीजेपी के कार्यालय में मिलेगा, आपको वो सही करके देंगे, आप नागरिक हो जाएंगे।
3: सब लोग जो हैं पागल हो गए हैं, इनको कुछ नहीं पता कि क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अब आप ये बताइए कि मैं हूँ, मेरे बाप दादा सब जो है यहाँ पे दिल्ली में रहे, अब हम क्या, फिर तो हमारे पास नागरिकता का कुछ है ही नहीं। आधार तुम नागरिकता नहीं मानते, वोटर कार्ड को तुम नागरिकता नहीं मानते, डेट ऑफ उसको क्या कहते हैं पासपोर्ट को तुम नहीं मानते, तो क्या है फिर तो है ही नहीं। फिर तो देश के 130 करोड़ लोगों के पास नागरिकता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि तुम नागरिक हो तुम नहीं हो, ये बताएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है पागलपना है और ये लोग पागल हो गए।
4: MEA की तरफ से जो बताया गया है वो एक प्रक्रिया को बताया। पासपोर्ट तो होना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट अकेले से आपका जो नागरिकता है वो नहीं बताता है, उसके लिए और बियॉन्ड जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया।
5: कीप वॉचिंग NDTV, वी आर स्लिपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर।

0: लिसन इन।
1: केतन अग्रवाल केस में आज पहली बार सिया के माँ बाप यानी प्रवीण जी और पूजा जी ये एक हॉस्पिटल के रूम से हमारे साथ हैं। मैंने अभी भी एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया है, लेकिन एक सवाल मैं वापस या एक सवाल बार बार मेरे तहे दिल में आता है जो मैं चाहता हूँ कि दुनिया तक पहुँचे। पुलिस ने जो कहा है वो हम लोगों ने कई बार देखा है, और एक पत्रकार के तौर पे मुझे भी लगता है कि इसमें इस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं वो आरोपों में दम है। आपको क्या लगता है इसमें जो जो ये आरोप लग रहे हैं आरोपी के साथ या ये जिसने गुनाह किया है उसके साथ क्या होना चाहिए?
2: इसमें जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए।
1: सख्त से सख्त मतलब क्या?
2: सख्त से सख्त फांसी की सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा,
1: और
2: फांसी की सज़ा कड़ी
1: कल
2: से
1: अगर ये
2: कड़ी
1: अदालत में
2: सज़ा,
1: साबित होता है कि सिया ने ये किया है,
2: तो उसे भी फांसी की सज़ा दीजिए। मैं तो बोलूँगा
1: आप होशोहवास में ये
2: यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ, जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए।
1: पूजा जी, आपको क्या लगता है,
0: मुझे
1: आपका क्या
0: भी
1: कहना है?
0: यही लगता है, अगर कोई आरोपी हो तो उसे सजा होनी चाहिए।
1: नहीं, मैं सीधी बात कर
0: आरोपी
1: रहा
0: कौन
1: हूँ, अगर
0: है?
1: आपकी बेटी, क्योंकि आरोपी आज आपकी
0: हाँ,
1: बेटी है,
0: आरोपी
1: अगर
0: मेरी
1: आपकी
0: बेटी हो
1: बेटी
0: तो
1: कल
0: मेरी
1: अदालत में
0: बेटी,
1: साबित होता है कि आपकी बेटी ने गुनाह किया,
0: ठीक है ना,
1: तो
0: मेरी बेटी ने गुनाह किया है तो मेरी बेटी को फांसी की सजा अभी के अभी दे दो आप। एक माँ बोल रही है ये। The Ministry of External Affairs recently said that an Indian passport is not a document that conclusively establishes citizenship, sparking debate over what exactly then serves as a proof of Indian citizenship. The MEA said citizenship is determined by legal provisions and prescribed procedures, not merely by possession of a passport. The BJP hit back at critics, insisting this is nothing new. Party sources cited Passport Act, saying passports can be issued in certain cases without conclusively establishing citizenship. MEA also said that this passport can also be issued to a non-Indian. So the opposition launched a sharp attack on Centre, stating that the government has made citizenship a joke, and if there is no document conclusively establishing that a person is an Indian citizenship, an Indian citizen, then what exactly or which document will exactly then go forward? In fact, Kapil Sibal went on to claim that if this is the case, then a BLO can question my identity when I go to vote, and then my vote is invalidated. If my vote is invalidated, then it goes to the BJP's kitty, as per the opposition's claim. And then the opposition said, then we are left with no answer, no certain solution, but knock the doors of the Supreme Court. So, what exactly will happen in this situation? The opposition is saying that this is another plot of the BJP to get more votes. Take a look at the reactions coming in.
2: Ministry of External Affairs. That is for the government to determine. There are other citizenship proofs. For instance, the Aadhaar card is there. So MEA has to tell us what is valid, what is not valid. I do not agree with this.
3: If you read the Passport 1967 Act, it proceeds on the premise that the holder is an Indian citizen. Now, please go and read Section 6(2), subsection A of the Passport Act, which says that if the applicant is not a citizen of India, you will not get a passport. Thirdly, passport is given after a very carefully verification by the police, then only passport is issued. And police verification is based on multiple, government steps are there. Fourthly, where should I get a citizenship certificate? See, my grandfather, his grandfather were born in India. So we don't have this concept of citizenship certificate. Citizenship certificate is given to only those people who acquire citizenship through registration or naturalization.
4: I think it is for the MEA to clarify themselves. They should say that has the government of India issued passports to citizens of foreign countries? As we know, passport as per the Passport Act is given to bona fide Indian citizens only. And therefore, it is a proof of Indian citizenship. But if it is not, then

0: जिसने गुनाह किया है उसके साथ क्या होना चाहिए?
1: इसमें जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए।
0: सख्त से सख्त मतलब क्या?
1: सख्त से सख्त फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा,
0: और
1: फांसी की सजा कड़ी
0: कल
1: से
0: अगर ये
1: कड़ी
0: अदालत में
1: सजा,
0: साबित होता है कि सिया ने ये किया है,
1: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए। मैं तो बोलूँगा
0: आप होशोहवास में ये?
1: यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ, जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए।
0: पूजा जी, आपको क्या लगता है,
2: मुझे
0: आपका
2: भी
0: क्या
2: ये
0: कहना है?
2: मुझे भी यही लगता है, अगर कोई आरोपी हो तो उसे सजा होनी चाहिए।
0: नहीं, मैं सीधी बात कर
2: आरोपी
0: रहा
2: कौन
0: हूँ, अगर
2: है?
0: आपकी बेटी, क्योंकि आरोपी
2: हाँ,
0: आपकी बेटी है,
2: आरोपी
0: अगर
2: मेरी
0: आपकी
2: बेटी हो
0: बेटी
2: तो
0: कल
2: मेरी
0: अदालत में
2: बेटी,
0: साबित होता है कि आपकी बेटी ने गुनाह किया है,
2: ठीक है ना,
0: तो
2: मेरी बेटी ने गुनाह किया है तो मेरी बेटी को फांसी की सजा अभी के अभी दे दो आप। एक माँ बोल रही है ये।
3: The Ministry of External Affairs recently said that an Indian passport is not a document that conclusively establishes citizenship, sparking debate over what exactly then serves as a proof of Indian citizenship. The MEA said citizenship is determined by legal provisions and prescribed procedures, not merely by possession of a passport. The BJP hit back at critics, insisting this is nothing new. Party sources cited Passport Act, saying passports can be issued in certain cases without conclusively establishing citizenship. MEA also said that this passport can also be issued to a non-Indian. So the opposition launched a sharp attack on centre, stating that the government has made citizenship a joke, and if there is no document conclusively establishing that a person is an Indian citizenship, an Indian citizen, then what exactly or which document will exactly then go forward? In fact, Kapil Sibal went on to claim that if this is the case, then a BLO can question my identity when I go to vote, and then my vote is invalidated. If my vote is invalidated, then it goes to the BJP's kitty as per the opposition's claim. And then the opposition said, then we are left with no answer, no certain solution, but knock the doors of the Supreme Court. So what exactly will happen in this situation? The opposition is saying that this is another plot of the BJP to get more votes. Take a look at the reactions coming in.
4: Ministry of External Affairs, that is for the government to determine. There are other citizenship proofs. For instance, the Aadhaar card is there. So MEA has to tell us what is valid, what is not valid. I do not agree with this.
5: If you read the Passport 1967 Act, it proceeds on the premise that the holder is an Indian citizen. Now please go and read section 6(2) subsection A of the Passport Act, which says that if the applicant is not a citizen of India, you will not get a passport. Thirdly, passport is given after a very carefully verification by the police, then only passport is issued. And police verification is based on multiple, government steps are there. Fourthly, where should I get a citizenship certificate? See, my grandfather, his grandfather, his grandfather were born in India. So we don't have this concept of citizenship certificate. Citizenship certificate is given to only those people who acquire citizenship through registration or naturalization.
6: I think it is for the MEA to clarify themselves. They should say that has the government of India issued passports to citizens of foreign countries? As we know, passport as per the Passport Act is given to bona fide Indian citizens only. And therefore, it is a proof of Indian citizenship. But if it is not, then they should clarify.
7: अरे अभी नागरिकता का आधार आपको बीजेपी के कार्यालय में मिलेगा, आपको वो सही करके देंगे, आप नागरिक हो जाएंगे।
8: सब लोग जो हैं पागल हो गए हैं, इनको कुछ नहीं पता कि क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अब आप ये बताइए कि मैं हूँ, मेरे बाप दादा सब जो है यहाँ पे दिल्ली में रहे, अब हम क्या, फिर तो हमारे पास नागरिकता का कुछ है ही नहीं। आधार तुम नागरिकता नहीं मानते, वोटर कार्ड को तुम नागरिकता नहीं मानते, डेट ऑफ उसको क्या कहते हैं पासपोर्ट को तुम नहीं मानते, तो क्या है फिर? तो फिर तो है ही नहीं, फिर तो देश के 130 करोड़ लोगों के पास नागरिकता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि तुम नागरिक हो तुम नहीं हो, ये

0: हाउस में भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए।
1: पूजा जी, आपको क्या लगता है?
2: मुझे
1: आपका
2: भी
1: क्या
2: ये
1: कहना है?
2: मुझे भी यही लगता है, अगर कोई आरोपी हो तो उसे सजा होनी
1: नहीं,
2: चाहिए।
1: मैं सीधी बात कर
2: आरोपी
1: रहा
2: कौन
1: हूं, अगर
2: है?
1: आपकी बेटी, क्योंकि आरोपी आपकी
2: हाँ,
1: बेटी है,
2: आरोपी
1: अगर
2: मेरी
1: आपकी
2: बेटी हो
1: बेटी
2: तो
1: कल
2: मेरी
1: अदालत में
2: बेटी,
1: साबित होता है कि आपकी बेटी ने गुनाह किया है,
2: ठीक है ना,
1: तो
2: मेरी बेटी ने गुनाह किया है तो मेरी बेटी को फांसी की सजा अभी के अभी दे दो आप। एक माँ बोल रही है ये।
3: The Ministry of External Affairs recently said that an Indian passport is not a document that conclusively establishes citizenship, sparking debate over what exactly then serves as a proof of Indian citizenship. The MEA said citizenship is determined by legal provisions and prescribed procedures, not merely by possession of a passport. The BJP hit back at critics, insisting this is nothing new. Party sources cited Passport Act, saying passports can be issued in certain cases without conclusively establishing citizenship. MEA also said that this passport can also be issued to a non-Indian. So the opposition launched a sharp attack on Centre, stating that the government has made citizenship a joke, and if there is no document conclusively establishing that a person is an Indian citizenship, an Indian citizen, then what exactly or which document will exactly then go forward? In fact, Kapil Sibal went on to claim that if this is the case, then a BLO can question my identity when I go to vote, and then my vote is invalidated. If my vote is invalidated, then it goes to the BJP's kitty as per the opposition's claim. And then the opposition said, then we are left with no answer, no certain solution, but knock the doors of the Supreme Court. So what exactly will happen in this situation? The opposition is saying that this is another plot of the BJP to get more votes. Take a look at the reactions coming in.
4: Ministry of External Affairs, that is for the government to determine. There are other citizenship proofs. For instance, the Aadhaar card is there. So MEA has to tell us what is valid, what is not valid. I do not agree with this.
5: If you read the Passport 1967 Act, it proceeds on the premise that the holder is an Indian citizen. Now, please go and read Section 6(2), subsection A of the Passport Act, which says that if the applicant is not a citizen of India, you will not get a passport. Thirdly, passport is given after a very carefully verification by the police, then only passport is issued. And police verification is based on multiple, government steps are there. Fourthly, where should I get a citizenship certificate? See, my grandfather, his grandfather were born in India. So we don't have this concept of citizenship certificate. Citizenship certificate is given to only those people who acquire citizenship through registration or naturalization.
6: I think it is for the MEA to clarify themselves. They should say that has the government of India issued passports to citizens of foreign countries? As we know, passport as per the Passport Act is given to bona fide Indian citizens only. And therefore, it is a proof of Indian citizenship. But if it is not, then they should clarify.
7: अरे अभी नागरिकता का आधार आपको बीजेपी के कार्यालय में मिलेगा, आपको वो सही करके देंगे, आप नागरिक हो जाएंगे।
8: सब लोग जो हैं पागल हो गए हैं, इनको कुछ नहीं पता कि क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अब आप ये बताइए कि मैं हूँ, मेरे बाप दादा सब जो है यहाँ पे दिल्ली में रहे, अब हम क्या, फिर तो हमारे पास नागरिकता का कुछ है ही नहीं। आधार तुम नागरिकता नहीं मानते, वोटर कार्ड को तुम नागरिकता नहीं मानते, डेट ऑफ उसको क्या कहते हैं पासपोर्ट को तुम नहीं मानते, तो क्या है फिर तो है ही नहीं। फिर तो देश के 130 करोड़ लोगों के पास नागरिकता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि तुम नागरिक हो तुम नहीं हो, ये बताएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है पागलपना है और ये लोग पागल हो गए।
9: एमईए की तरफ से जो बताया गया है वो एक प्रक्रिया को बताया, पासपोर्ट तो होना चाहिए लेकिन पासपोर्ट अकेले से आपका जो नागरिकता है वो नहीं बताता है, उसके लिए और बियॉन्ड जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया।
3: कीप वॉचिंग एनडीटीवी, वी आर स्लिपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर।